साधो रचना राम बनाई। एक बिनसै एक अस्थिर मन है अचर्ज लख्यो न जाई। सोरठ महला नौवां अजहू समझ कछ बिगड़े ओ नाहन। भज ले

संपद बनता विनोद छोड़ गए बहु लोग पो हैवर गैवर राज रंग त्याग चलेओ है मूड नंग चोआ चंदन देहे फूलिया सो तन धर संग रुलिया सो तन धर संग रुलिया सो तन धर संग रुलिया मोहे मोहे आ जाने दूर है कौ नानक सदा।

अख से शरीर ए दोए अखर ना खिसे जो गह रहे हो कबीर। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

जह कहत है भरपूर शब्द दीपक दीपायो, जय सिख है संग्रहयो तत हर चरण मिलायो। तिन बेदियन की कुल बिखै प्रगटे नानक राय।

ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी।

देवा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही, सतगुरु

वस्त्र छीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेवया अंतवार रे मन सेव तू पर तने सेवया बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल पही सद सिद्ध बेणी को कुर कियो प्रगास रे मन तू भी हो है दास जय देव त्याग्यो अहमे नाई उधरे सैन से मन डीग न डोले।

गुण निदान सिमरंत नानक सगल जा चंत जाच के दुर्गम सतान सुख मंग महा दुख सर्व सुखने दुर्वचन पीद परमंग साकत पिसनंग ना सर्वजने अस्त्रिंग सुख अग्रंग पै कीनंग पता निरप भै पै अटवियंग महानगर बासंग धर्म लखणे प्रभ मेया सा संग राम नाम राम राम रमणग सरन नानक हर हर दयाल चरणग हे जित सूर संग रामग अत बलना बा मर्दने गण गंधर्व देव मनुखिया पशु पंखी बेमोने हर करण हर अंग नमस्कारंग सर नानक जगदीश ब्रै हे कामग नरक विश्रामग बहु जोनी परमावने चेतरनग त्रै लोक गमहंग जप तप सील बदारने अल्प सुख वित चंचल ऊच नीच समावने पाव पै बिमुचित सात संगम ओट नानक नारायण ने हे काल मूल कोरो दंग कदांच करना मैं उपर जते बिख अंत जीवंग बिसंग क्रोध निरतंग क्रोध जथा मरकटे अन अनक शासन तड़ांत जम दूते तब संगे

छूटा, फिर पाछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूटा। कबीर ऐसा कोई न जन्मयो, अपने घर लावे आग, पंचो लरका जार के रहे राम लिबलाग। को है लरका बेचिए लरके बेचे लरका बेचे को, वाहिगुरु। को है लरका बेचे लरकी बेचे को, सांझा करे कबीर स्यों हर संग बंज करे। कबीरे उचित अपनी मत सह सारे जाए, पाछे भोग जो भोग वै तिनको गुड़ लै खाए। कबीर मैं जान्यो पढ़वो पलो, पढ़वे स्यों पल जोग, भगत न छाडू राम की पावे निंदो लोग। कबीर लोक करिंदे बापड़ा, जे मन नाही ज्ञान, राम कबीरा रब रहे।

प्रीत को जय जात भरन को ल जाए। कबीर मुक्त द्वारा शंकरा दाराई दसमे पाए। मन तो मैगल होए रियो निकसो कहो कह जाए। कबीर ऐसा सतगुर जे मिले तुठा करे पसाओ। मुक्त द्वारा

मत हर पूछे कौन है परा हमारे बारा। कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीरा, क्या जानू कुछ।

नदी नाम संजोग ज्यो बहर न मिल है आए। कबीर सा तस्म हुंदे मस करो कलम करो बनराए, बसुदा कागद जो करो हर जस लिखन।

काए, जो कुछ किया सो मन किया, मुंडा मुंडा जाए। कबीर राम ना छोड़िए, तन तन जाए ता जाओ, चरण कमल चित बेदिया, रामे नाम समाओ। कबीर जो हम जंतब जावते, टूट गई सब तार, जंतब

सिमरन छाड के रात जगावन जाए, सरपन होके उतरे जाए अपने काए। कबीर हर का सिमरन छाड के अहोई राखे नार, गद ही होके उतरे पार सहे मन चार। कबीर चतराई अतकणी हर जप हिरदे माहे, सूरी ऊपर खेलना गिरे तठा हर ठाहे। कबीर सोई मुख तन है

राम सनेरी स्नेही बहरा जंपर मेरे पाए। कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के काट, तहां कबीरे मट किया खोजत मुन जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते

एक अनेका मिल गया एक समाना एक कबीर जा कर साधन सेवी है हर की सेवा नाही ते कर मरठ सार के भूत बसे तिन माहे वीर गुंगा हुआ बाबरा बहरा हुआ कान पा बहुते पिंगल पया मारिया सतगुरबान वीर सतगुर सूर में वाहा बान जो एक लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक वीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूमि विकार बिन संग त्यों मानी होए गई पटसार कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मलाई अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाय कबीराज का बेहों जाए था आगे मिलया खुदाई साई मुझ स्यों लर परया तुझ किन फरमाई गाय कबीर हज का भी हुई हुई गया केती बार कबीर साई मुझ में क्या खता मुखो न बोले पीर कबीर जी जो मारे जोर कर कहते हैं जो हलाल दफ्तर दई जब काट है होएगा कौन हवाल कबीर जोर किया सो जुलम है ले जवाब खजाए दफ्तर लेखा नीक से मार मुह मोखाए कबीर लेखा देना सहेला जो दिल सूची होए उस साचे दीवान में पला न पकड़े कोए कबीर धरती और आकाश में दो तू बरी अबद कट दर्शन सांसे परे और चुरासी सिद्ध कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं किश नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूँ जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू कबीर बकारे चितवते झूठे करते आस मनोरथ कोय न पूरे चल उठ निरास कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार इत्ते उत कते न डोली जिस राखे सिर जड़हार कबीर पानी कहानी पीड़ते सतगुर लिए शदाई परा पूर्वली भावनी प्रगट हुई आई कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़न तो जाय ना हर भजियो ना खत फट्यो काल पहुंचो आए अल्लाह पंजवा कबीर कूकर पौंकना करंग पिछे उठता आई करमी सतगुर पाया जिन होलिया छुड़ाए महला पंजवा कबीर धरती साध की तस्कर बैसै गाही धरती भार न व्यापी उनको लाहू लाही महला पंजवा कबीर चावल कारने तुक मोहली लाई संग कसंगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोया नामा माया मोया कहित लोचन मीत काहे शिपो शायल राम न लाभ चीत नामा कहे तलोचना मुक्ते राम संभाल हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल महला पंजवा कबीर हमरा को नहीं
हम किसी हूँ के नाहीं।

वीर कोठे मंडप हित कर काहे मरहो सवार कारज साडे तीन हथ कनी तपौने चार वीर जो मैं चित बो ना करे क्या मेरे चित वह होए अपना चित्त।

कबीर एक घड़ी आदि घरी आदि हूँ ते आद पागतन से ती गोष्टे जो कीने सो लाभ। वीर पांग माशले सुरापाना

चीरत नाही संत कह नामा क्यों पाइए बिन भगतो भगवंत हर हीरा हर सोही।

ऊपर अंगारा रीदाल लूड़े दाख बजावरिया के कर भी जय जट अंडे उनक ताए दा पैदा लोड़े पट रीदा गलिये चिकड़ दूर घर नाल प्यारे नेहे चला ता भिजे कंबली रहा ता टुटे नेहे भिजो सिंजो कंबली

पातनु रहे सुचेत रीदा गल्ली सो सजन बिही एकुट नेंदी नालहा तुखा जो मालिही कारण तेना मा पिरी रीदा इह तन पौकना नित नित दुखिए कौन कन्नी बुझे दे रहा कीती भगे पौन रीदा रब खजूरी पक्कियां माखे नहीं बहाना जो जो बंजे डिहिड़ा सोमर हथ पवन रीदा तन सुका पिंजर थिया तलियां खूंडे काग अजो सुरब न बहड़ियो देख बंदे की भाग कागां करंग टंडोलिया

दरगहे आए कम रीदा हो बलिहारी तिन पंखियां जंगल जना वास ककर चुगन थल बसन रब न छोड़न पास रीदा रुत फिरी बन कंबिया अत चढ़ी चढ़ पाहे चारे कुंडा ढूंढियां रैन कथाऊ।

मन भेड़ी अंग, क्या हंस क्या बगला जाको नदर सरे, जे तिस भाव है नानका कागो हंस करे। सरवर पंखी हे खड़ो आही बाल पचास, यो तन लहरे गढ़ थया सचे तेरी आस। कवन सो अखर कवन गुण कवन सो मणिया मंत, कवन सो वे सो हो करी जित वसया वै कंत। निबड़ सो अखर कवन गुण कवन सो मणिया मंत, कवन सो वे सो हो करी जित वसया वै कंत। ड्रिबण सो अखर खबण गुण जेहबा मणिया मंत, ये त्रै भैने वेस कर ता वसया भी कंत। मत होंदी होए आना तान होंदे होए नताना, नहोंदे आप वंडाई को ऐसा भगत सदाई, एक फिका ना गलाई।

हर रस पूर्ण सर्व कला गावे सन काद साधु सदा दिक मुन जन गावे अशल शला

सुप्रीत लगाई इक्योत्तम पंथ सुन गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ की रत की गुरु रामदास राखो शरणाई मोह मल बिवस कियो काम कह के पछाड़ो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अवमान सुचाड़ो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो हुए सो मन भव सागर बंदिया सिख तार सो प्रसन्न सिर तत आत्पत सचो तख्त जोग भोग सू जत बल गुरु रामदास सच सल फानो तू अटल राज भग दल तो सतगुरु चाहो जोगी आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख स्वै तुर तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रैलो अगम अगुच उदरण अगम निगम उदरण जरा जम अरो गुरु अमरदास तीर्था प्यो पारग परगामी तारण तरणों

ओंकार सतगुरु प्रसाद सिमरं सोई पुरख अचल बनासी जिस सिमरत दुर्मत मल्लासी सतगुरु चरण कंवर तारंगे गुरु अर्जुन गुण सहज विचारंगे गुरु रामदास कर क्यों प्रकाशा सगल मनोरथ पूरे आसा तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाने कल जोड़ कर सुज सुबखाने

सन्मुख रहो। कलयुग जहां अर्जुन गुरु, कलयुग जहाज अर्जुन गुरु, सगल शेष लग वितर तह जन जाचो जगत्र पर, जानित बासर रहन बस जाको हित नाम स्यों। परमातीत परमेश्वर कै रंग रंग, बासना ते बाहर पै देखिए ते ताम स्यो। अपरा पा परा परम्पर पुरख सो, प्रेम लागो बिन भगवंत रास, नाही ओरे काम स्यो। मथुरा को ब्रह्म सर्व मैं, अर्जुन गुरु भगत कै हित पाए रे हो, मिलत्या राम स्यों। अंतन पाव दे सब मुन, इंद्र महासिव जोग करी, कुण वेद बिरंच विचार रहो, हर जापना छाड़ो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत सृष्ट निहाल करी, रामदास गुरु जगतारण को, गुरु ज्योत अर्जुन माए तरे। जग और नया है महात्म मैं, अवतारे उजागर आन कियो, तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिने अमृत नाम पियो। ये पद्धत ते मां चूके रे, मन भेद बभेद न जान बियो, पर ताच हृदय गुरु अर्जुन कै, हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। जब लो नहीं भाग लीलार उदे, तब लो भरम ते फिर ते बोधाए। कल घोर समुद्र में बूढ़ थे, कहूं मिट है नहीं रे पछताए। ओ तत् विचार यह मथुरा जगतारण को अवतार बनायो, जप्यो जिने अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन कर बनाया। कल समुद्र भय रूप प्रगट, हर नाम उदाहरण, बसा संत हृदय दुख दारिद्र निवारण। निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोय, मन बच दे जाने ओ पयो ते समसर सोए। धारण गगन नव खंड मैं, ज्योत सब रूपी रहो पार, पन मथुरा कच भेद नहे, गुर अर्जन परतख हर। अजय गंग जल सटै सिख संगत सब नावै, नित पुराण बाचे वेद मरमख मुख गावे। अजय चवल सिर ढुले, नाम अमृत मुख लियो, गुर अर्जन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर, गुरु रामदास हर पै गयो, हर वंश जगत जस संसरो, सो कौन कै सिर गुरु मोयो। देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो, हर सिंहासन दियो श्री गुरु तै बठायो। रहस कियो सुर देव तो जस जस जय जंग पै, असर गए ते भाग, पाप वितन भीतर कंपै। काटे सो पाप तिन नर हो के, गुरु रामदास जिन पाए। ओ छत्र सिंहासन प्रथमे, गुरु अर्जुन को दे आयो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सब हंगुर प्रसाद, सलोक वारा ते वधीक महला पहला। ओ तंगी पै होरी लहरी, गहरी गंभीरी, सोसड़ सही है किव करी, निम्न जाए थने। गज लगा गड़बड़ी, सुखिय सखिय धौल हरी, से पीटें दे डिठ मै मुंदना गर्व थने। सुन मंद हरणा की है,

सस जीरा पर रेहो माँ को अवरण टांगा नाने गुरमुख बुछुटी हर प्रीतम सो सांग बाग मरे मन मारिए जे सतगुरु दिखिया होए आप पछाने हर मिले बहड़ना मरना होए कीचड़ हाथ न डूबाए एका नदर निहाल नानक गुरमुख उबरे गुरु सरवर सची पाल अगन मरे जल लोड़ लो बिन गुर निध जल नाय जन्म मरे परमाई जे लख करम कुमाए जम जागत न लगे जे चल सतगुरु पाए नानक निर्मल अमर पद गुरु हर मेले मेलाए कलर केरी छपड़े कौआ मल मल नाए

परम जोत जगाए वाजा वावसे मनो जिंदे कूप कहया बिरद न जानने मन अंदे उंदे कमल दिसने खरे करूप।

रस कस न जानंत इकना सिद्ध न बुद्ध न कुल सर अखर का पिहो न लहंत नानक ती नर असल खार जे बिन गुण गर्व करंत सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्राह्मण सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्राह्मण जब तब संजम कुमावे करम सील संतोख का रखे धर्म बंधन तोड़ होवे मुगत सोई ब्राह्मण पूजन जुगत खत्री सो जो कर्मा का सूरा पुन दान का करे शरीर खेत पछाने बीजे दान सो खत्री दरगे परवान लब लोभ जे कूड़ कमावे अपना की ताया पे पावे तन न तपाए तनूर जो बालन हडन बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री समाल सबने कटी सोहमस सहबिन घट न कोई नानक ते सुहागणे जिना गुरमुख प्रगट होए जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कान की जय।

एक ओंकार सदगुरु प्रसाद अभ्यागत एह ना किए जिनके मन में भरम तिनके दिते नानका ते हो जिहा धर्म अभय निरंजन परम पद तका भीख को होए तिसका भोजन नानका विरला पाए कोय हुआ पंडित ज्योति के वेद पढ़ा मुख चार नवा खंडा विच जानिया अपने चज विचार ब्राह्मण कैली घातकों का अनचारी का तान फिटक फिटका कूड़ बदिया सदा सदा अभिमान पाहे ते जाहे विसर नानका एक नाम सबुद्धि जलाई है इक रहे तत् ज्ञान माथे जो तुर लिखिया

अंतर आए बसै गुर शब्द विचारै कोय, नानक शब्द मरे मन मानिया साची साची सोए। नानक शब्द मरे मन मानिया साचे साची सोए। माया मोह दुख सागर है बिख दुत्र तरिया ना जाए, मेरा मेरा कर दे पच मुए होमे करत बिहाए। मन मुखा और वार ना पार है अद बिच रहे लपटाए, जो तुर लिखिया सो कमावना करना कछु ना जाए। गुरमति ज्ञान रतन मन वसै सब देखिया ब्रह्म सुपाए। नानक सतगुर बोहे थै बुढ़ भागी चढ़ै ते भोजल पार लंघाए। मेर सतगुर दाता को नहीं जो हर नाम दे आधार,

तुर हर प्रभ करते लिखिया सो मेटना न जाए जीव पिंड सब ते सदा प्रितपाल करे हर राय चुगल निंदक भुखे रोल मुए ए न हाथ ना के थाऊ पाए बाहर पखंड सब कर्म करे मन हृदय कपट कमाए।

मन आवण जान ना सुजई ना सुजै दरबार माया मोहे पलेटिया अंतर अग्ञान गुबार। तब नर सुत्ता जागया सिर डंड लगा वो पार गुरमुखा।

मर जम है वारो वार, जीव दया नु मिले सो जीव दे, हर जग जीवन उरधार। नानक गुरमुख सोहणे

ए बड़ धन और को नहीं पाई जे बड़ सच्चा नाव सदा सच्चे के गुण गावा पाई।

सच्चे शब्द सुपाए सब किस तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाई आप जाने प्रीतम मिल पुठा शह बरलाय चिम चिम अमृत बरसदा तिसना भुख सब जाय कूक पुकार ना हो बई ज्योति ज्योत मलाय नानक सुख सवन सोहागणी सचा नाम समाय तुरों खासम भेजिया सच्चे हुक्म पठाय इंद वर्ष दया कर गूढ़ी शह बरलाय बावी हे तन मन सुख हो जा तत बूंद मोय पाय अन तन बोताय उपजै धरती शोभा पाय आंदन लोग भगत करे गुर कै शब्द समाए आपे

सच्चे शब्द समाए पैका सहज शिगार करि हो सच रहौले बनाए। नानक नामो मन बस हर दर गलै छडाए। बाविया सगली धरती जे फिरे उड़ चढ़े आकाश।

मत भवी फिरे चल चेतो, मन मुख सो कर दोस्ती, सो के पुछे मेतो। गुरमुख सो कर दोस्ती, सतगुरु सो लाए चेतो। जमण मरन का मूल कटिए, ता सुख होवी मेतो।

वाहु वाहु सतगुरु सत पुरख है जिसनो सामत सब कोई। वाहु वाहु सतगुरु निरवैर है जिस निंदा उस्तत तुल होई। वाहु वाहु सतगुरु सुजान है जिस

वर्त नेम सुत संजम पूजा पाखंड परम ना जाए अंदरों को सुध माया मोह बेदे ज्यो हस्ती शार उडाए जेनो पाए तसे ना चेते हे बिन चेते क्यों सुख पाए नानक परपंच किया तुर करता है पूर्व लिखिया कमाए गुरमुख प्रतीत पई मन मानिया अंदन सेवा करत समाए अंतर सतगुर गुरु सा पूजे सतगुर का दर्श देखे सब आए मनिया सतगुर परम विचारी जित मिलिया तिशना पुख सब जाए हो सदा सदा बलहारी गुरु अपने जो प्रभ सच्चा दे मलाए नानक कर्म पाया तिन सच्चा जो गुर चरनी लगे आए जिन प्रिया सुने हो से सज्जन मैं नाल अंतर बार हों फिरा पे हृदय रखा समाल जिना एक मन एक चित त्याया सतगुर।

नानक सतगुर तिन को मेलियोना जिन तुर मस्तक भाग लखाए अंदर तृष्णा अग है मनमुख भुख।

जमन मरना चुकाई हमें कर्म कुमाय। गुरसरनाही उबरै नानक लेश डाय, सतगुर पुरख हर त्याईंदा सतसंगत सतगुर पाय। सतसंगत सतगुर सीमंदे हर मेले गुर मिलाय, यह भौ जल जगत संसार है।

आए तोर मस्तक हार प्राव लिखिया गुर नानक मिल आया आए जम कंकर मार बदारियना हर दरगह लय छाए गुर सिखा नु साबास है हर तुठा मेल मिलाए गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया जिन विचों परम चिकाया राम नाम हर कीर्त गाए कर चानन मग दिखाया हमें मार एक लिव लागे अंतर नाम मसाया गुरमती जम जोहे न सकै सच्चै नाए।

नारी पांचम हरकत साख सुनाब हे बंगाल मध माधव गाब हे ललत बिलावल गाब हे अपनी अपनी पहात अष्ट पुत्र भैरव के गाब हे गायन पातर द्वितीया माल कोस कलाप हे संग रागनी पांचो थाप हे गोंड करी।

सोठ गुण मलारी तुनी पुन गाव हे आशा गुन गुनी ऊंचे सुरसुओ पुन कीनी मेघ राक्षो पांचो चीनी बैरा तार गज थर केदारा जवली तार नाटे।

आनंद भया मेरी माहे सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सह से ती मन बजिया बधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गा बनिया या शब्दूता गाव हो हरि केरा मन जनी वसाया कै नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रो वर नाली अल्ला रो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार हो करे तेरा कार सब सवारना सबना गल्ला सुमरा स्वामी सो को मन बसारे गए नानक मन मेरे सदा रो वर नाली साचे साहिबा क्या नाही करते रह करता तेरा सब किश है जिस देह सो पाव ए सदा शिव सलाह तेरी नाम मन बसाव ए नाम जिनके मन बसिया।

उपजय बिन सहजे सहसा न जाय न जाय सहसा कित संजम रही कर्म कमाय सहसे जियो मलीन है कित संजम थोता जाए मन धोब हो शब्द लाग हो हर स्यो रहो चेतलाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजय हो।

बिन सतगुरु मुक्त ना पाए, फिर मुक्त पाए लाग चानी। सतगुरु सब सुनाए कह नानक विचार देखो, बिन सतगुरु

सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ते कच्ची सतगुरु बाज हो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख खाणी, हर नित करे रसना कहया कछु न जानी। चित जिन का हर लया माया, बोलन पैर वाणी गए नानक सतगुरु बाज हो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन ही रे जित जराऊ, शब्द रतन जित मन लागा।

आपे हुकम बरताए, हुकम बरताए आप वेखै गुरम किसे बुझाए। तूड़े बंधन हो वै मुक्त शब्द मन विसाए, गुरमुख जिसनों आप करे सो हो वै एक स्यों।

के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक यो शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर स्यों।

संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीतो कहते पवितो सतगुरु रहया पर पूरे बिनवंत नानक।

सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सलोक

दीन दत्त निवार ठाकुर, राख जन की आप तन तन हर नेदो दुख ना सके ब्याप। दीन दर्द निवार ठाकुर, राखे जन की आप तन तन हर नेदो दुख ना सके ब्याप।

तिस बिना नहीं कोवे, जन मन निवार हर जप सिमर स्वामी सोई, वेद सिमरत कथा शास्त्रो भक्त करे विचार, मुक्त पाइए साध संगत बिनस जाए अंधार, चरण कमल धार जन का रास पूंजी एका,

चरण कमल अधार जन का रास पूंजी एक तान मान दीवान साचा नानकी प्रवटे का। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनाशरी।

राख्य जन की आप। तन तन गुरु अर्जुन महाराज कह रहे हैं, गुरु नानक जी परमात्मा रूप आप अपने भगत की लाज रखण आउंदे आ, गां नौकर नहीं रखे, कोई देवी देवता नहीं भेजदे, कोई सर्वेंट नहीं भेजदे। महाराज कहिंदे सीधा संबंध उस वाहिगुरु जी नाल। कल किसी के घर प्रोग्राम सीगा, उत्थे बैठे हुक्मनामा साहब की विचार करते मेरे जेन च आया कि जे आप किसी लीडर इस घर च सदना हुंदा, जे आप किसी संत महात्मा सदना हुंदा, तो किन्ना कुछ करना पैना सी, उदी बुकिंग करनी सी, फिर उदे चेलियां ने आके देखण आना सी, कई कुछ होना सी। 15 भगत सारे गुरु दे सिख, गुरु साहब धन गुरु नानक जी आप उत्थे आके उन्हां दे घर दे विच बैठ गए। चित चेते ही नहीं हुंदा किसी वेले। सेम गल हुंदी आनंद कारज दे उपर, कोई वधिया गैसट आया होवे ना, सारे उहदे वल्लों देखण लग पैंदे आ वी इह एक्टर आया वड्डा इहनां दे विआह दे उपर। ते उस आनंद कारज दे विच सतगुरु नानक जी आप सिंघासन ते बैठे हुंदे आ, ते उह वीडियो बनाउण दे विच विच उहदा ध्यान ही नहीं हुंदा। आपां बड़े भागा वाले आ कि सतगुरु जी आप आप आप विच बैठते आ, ते आप ही साडे दुख सुख सुणदे आ, किसे नूं तीसरे बंदे नूं नहीं भेजदे। जाओ बुलाउंदा वी उहदी गल सुण के आ ते मैनूं आके दसी, कोई मिडलमैन नहीं, राखे जन की आप। बस इस गल दा ध्यान रखिए, वाहिगुरु जी आप विचरदे आ, आप विचरदे आ। कुछ वीकां पहलां आनंद कारज दे विच ना संगत दे विच तां मैं गल करन लगा, थोड़ी जी अवेयरनैस चाहीदी आ। जिहड़ा बच्चा बच्ची महाराज की हजूरी बैठते उन्हां दी खास जिम्मेवारी हुंदी आ, क्योंकि जिदा अमृत छकण जाईदा ना, ते ओह इबलाखी जिहड़ा हुंदा ओह खास हुंदा, क्योंकि उस दिन उहदा गुरु नाल संबंध जुड़ना। ते एक फैशन चल पिया आ कि बच्चियां की चुन्नी इत्थे जूड़े दे उत्ते रख दित्ती जांदी आ, सिर सारा नंगा हुंदा, ते अगे कोई टिक्के टुक्के जिहा ला के ते सारा सिर उहनां दा फैशन नाल भरिया हुंदा। ग्रंथी सिंह की जिम्मेवारी हुंदी आ कि उस बच्ची नूं प्यार ना कहना कि पुत जी अपना सिर टक लो, पर जो उत्थे बैठी हुंदी आ उदों नहीं टकाया जा सकता, क्योंकि सिर दे उत्ते इन्नियां क ज्यादा पिन्नां लगियां हुंदियां, चुन्नी चाह के भी नहीं हिलदी। ते इस करके साडी जिम्मेवारी हुंदी बच्चियां नूं पहलां कहना। अज भी मीटिंग होनी आ, हर मीटिंग दे विच मैं भैन जी ने परमजीत कौर ने लिस्ट बनाई हुई आ, उहदे च पहली गल आ वी हैड कवर, फुल हैड कवर चाहीदा। पर उन्हां नूं लगदा हुंदा सम टाइम ज्ञानी तां एवें बोलदे रहिंदे आ, आपां अपनी मर्जी करांगे, तुसीं जे मर्जी कर लोंगे साडा कुछ नहीं जाणा, किरपा तुहाडे ते होणी सी, तुसीं जिन्ना सतगुरु नूं वध सत्कार दिओगे उन्ना वध प्यार लै लोंगे। तुसीं तुहानूं जे लगे भी ज्ञानी दी बेइज्जती करती असीं अपनी जिद पुगा ली, तां इदां तां कुछ नहीं मिलना जी। साडा फर्ज़ आ तुहानूं रिमाइंड करवाउणा कि बहुत वारी जाने अणजाने च असीं गलतियां करदे आं, ते ओह महाराज ने साडे गल दे विच पटा पाया, हम कूकर तेरे दरबार भौंके आगे बदन पसार। असीं बोलदे आं तुसीं किरपा करो वाहिगुरु जीओ, सानू इन्ने क जोगे कर लो कि असीं आप जी दी गुरबाणी दा प्रचार कर सकीए। साडे दे विच इन्नी योगता नहीं, प्रबंधकां को भी इन्नी योगता नहीं, असीं किसे नूं जज कर सकीए, पर कुछ ना कुछ बंदिशां आ मर्यादा दियां, सिर ढकण दियां। इस करके असीं इत्थों बेनती करी दी हुंदी आ, साडा मतलब इत्थे किसे दी बेइज्जती करना नहीं हुंदा। सो बच्ची जदों भी दरबार साहब दे विच आवे, साडी संगत दा इह फर्ज बणदा, साडी बच्ची आ, ते उहनूं कहिणा पुत इत्थे तक सिर ढक ला, अज तुहाडा खास दिन आ। पर जे वह यह सोचे भी नहीं साडी बेइज्जती करदे आ, फिर इहदे विच साडा कसूर मैनूं समझ नहीं आया। परिवार ने किसे वेले रोस कीता कि तुसीं साडी इंसल्ट करती आ, ते मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगी सी। मैं कहा सी भी नहीं कोई गल नहीं, पर सानूं यह लगा सी तुसीं सतगुर दी इंसल्ट कर रहे हैं। असीं कहा भी सी, असीं बेनती कीती सी, तुसीं नहीं मन्ने।

सुनो जे ठाकुर पावा देहो दर्श मन चाओ भक्ति मन ठहरावै बड़े उच राग अंधियारु मैं सब काल उदरी एक नाम धर्मा सगल प्रगट सगल हर भवन मैं जन नानक गुर पार ब्रह्मा वाहिगुरु जी तेरा हुक्म सावण आया मैं सत कहाल जो आया नौ बीजन लगा आस कर हर भूल बख्श चुमाए जियो तेरिया भगता भुख साध तेरिया हर लुचा पूर्ण मेरिया दे दर्श सुख दात्या मैं गल विच लहु मुलाए जियो देहो दर्श सुख दात्या मैं गल विच लहु मुलाए जियो वाहिगुरु जी गौड़ी सुखमणी महला पांजवां सलोक

अष्टपद सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन्मय मिटावो सिमरो जस सुमर एक है नाम जपत अगंत एक है वेद प्राण सिमर सुधाखिर कीने राम नाम एक आखिर किनका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै कांखी एक है दर्श तुहारो नानक संग मोय उधारो सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम प्रभक्त जना का मन विश्राम रहाउ प्रभु का सिमरन गर्व न बसै प्रभु का सिमरन दुख जम नसै प्रभु का सिमरन काल पर हर प्रभु का सिमरन दुश्मन टरै प्रभु सिमरत कष्ट विघ्न लागै प्रभु का सिमरन अंतन जागै प्रभु का सिमरन पौ न व्यापै प्रभु का सिमरन दुख न संतापै प्रभु का सिमरन साध का संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभु का सिमरन रिद सिद्ध नौ निद प्रभु का सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु का सिमरन जप तप पूजा प्रभु का सिमरन बिनसै दूजा प्रभु का सिमरन तीर्थ शनानी प्रभु का सिमरन दरगाह मानी प्रभु का सिमरन होय सो भला प्रभु का सिमरन सुफल फला से सिमरे जिन आप सिमराए नानक तक लागू पाए प्रभु का सिमरन सब ते उच्चा प्रभु का सिमरन दुरे मूचा प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझा प्रभु का सिमरन सब की सुजा प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा प्रभु का सिमरन मन की मल जाए अमृत नामृत मय समाए प्रभु जी बसा साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरन से तन मनते प्रभु को सिमरन से पत बनते प्रभु को सिमरन से जन परवान प्रभु को सिमरन से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरन से बेमोहताजे प्रभु को सिमरन से सर्व के राजे प्रभु को सिमरन से सुखवासी प्रभु को सिमरन सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगर वाला प्रभु को सिमरन से परे पुकारी प्रभु को सिमरन तिन सत बलहारी प्रभु को सिमरन से मुख सुहावे प्रभु को सिमरन तिन सुख बिहावे प्रभु को सिमरन तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरन तिन निर्मरीता प्रभु को सिमरन तिन अंध कनेरे प्रभु को सिमरन बसे हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरा भाग प्रभु का सिमरन कार्य पूरे प्रभु का सिमरन कबो न झूरे प्रभु का सिमरन हर गुरबानी प्रभु का सिमरन सह सुमानी प्रभु का सिमरन नेचल आसन प्रभु का सिमरन कमल विगासन प्रभु का सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार सिमरन से जन जिनको प्रभु मया नानक तिन जन शरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन पय सिद्ध जती जाते हर सिमरन नीच चौं कुंट जाते हर सिमरन धारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगलिया कारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तेन पाया सलोक धीन दर दुख पंजना घट घट नाथ नाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मनुहा नाम त्रसंग सहाई जय महा भयान दू जम दलै तक केवल नाम संग तेरा चलै जय मुश्किल हो वै तु भारी हर को नाम खिर माय उदारी अनक पुरा चरण करत नहीं तरह हर को नाम कूट पाप पर हर गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया ला करोरी बांधना पर हर का नाम जपत निस्तर अनक मै रंग देखना बुझावे हर का नाम जपते आगावे जे मार्गे जाते केला ते हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूट नहीं कोट लख बाही नाम जपत ते पार पुराही अनक बिघन जाया सिंगार है हर का नाम तत्काल उदार है अनक जोन जन मैं मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मेला मल कबो न धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपू मन रंग नानक पाया साध कै संग जे मार्ग के गने जाय न कोसा हर का नाम उहां संग तोसा जे पैंडा मायंद गुवारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ त्रा को न सियानू हर का नाम तनाल पिछानू जय महा भयान तप्त बहु काम ते हर के नाम की तुम ऊपर छाम जहां त्रिखा मन तुझे करख तो नानक
हर हर अमृत वरखै बहुत जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर का नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कुमात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रति रंग एक है नानक जन कै बिरत विवेक है हर का नाम जन कौ मुक्त जोगत हर का नाम जन कौ तृप्त भोगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का प्रण भंग हर का नाम जन की वड़ियाई हर का नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन कौ भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालिक जीना हर तन जन कौ आप प्रभु दीना हर हर जन कै उड़ सताणी हर प्रताप जन और न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त भौ करे नानक जन संग केते तरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग बड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तोल का शिवर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जान को सलोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्व टंडोला पूछ सुनाई हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान काठ शास्त्र सिमरत विज्ञान जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमा कर राती वर्त नेम करे बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै महा उदास पीसर तीवै अगन माहे होमत प्राण कनक अश्व है भूम दान न्योली करम करै बोयासन जैन मार्ग संजम अत साधन निमक निम कर शरीर कटावै तो पी होमै मैल न जावै हर के नाम समसर काश ना है नानक गुरमुख नाम जपत गात पाए मन कामना तीर्थ दे छोटा गर्भ गुमान न मन ते होटा सोच करा दिन अर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबू न बिखा टरै जल तो वह बौदे अनीत शुद्ध काहे काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहु मूच बहुत सियाणप जम का भौ व्यापै अनक जतन कर तृष्णा त्रापै पेख अनेक अग नहीं बुझा कोट पाप दरगा नहीं सिजा झूठ नाही उप्याल मोह व्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जाम डान गोविंद भजन में तिल नहीं मान हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोला सह सवाए चार पदार्थ जे को मांग साजना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै जे को अपनी शोभा लोरै साध संग होमै छोरै जे को जन्म मरण ते डरै साजना की शरणी परै जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस कहो जो जाना नीचा सो गुनिया सब ते उचा जाका मन हुए सगल किरीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखा सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जान साम दृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा निरतन कहो धन तेरो नाओ निथामे को नाओ तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान कारण क्रावण हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गातमित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी अस्तित तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जाप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया सा संग दुरमत मल हिरिया सगल उदम मैं उदम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बाणी मैं अमृत बाणी हर को जा सुन रसन बखानी सगल थान त्यो उत्तम थान नानक जे कट्टा बसा
जेह घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार एनिया सो प्रभ सदा समाल जिन किया तिस चीत रख नानक निभही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सास वार शिंगारिया गर्भ अग्न मैं जिनै उबारिया बार अवस्था तुझे प्यारा दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सैन मुख अप्याओ बैठ कौ दैन ए निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श लियो तौ नानक सीज जे प्रसाद धारी ऊपर सुख वसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक मुला जे प्रसाद भोगा साव रसा सगल समगरी संग साथ बसा तीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मुड़ अंध व्यापे नानक काल लेहु प्रव्यापे आदि अंत जो राखन हार तिसो प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नवनित पावे ता सो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सा सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे चाकी टहल पावे दरगा मान तिसे बिसारा मुक्त अजान सदा सदाए भूलन हार नानक राखन हार पार रतन त्याग कौडी संग रचै साज छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर करमाना जो होवन सो दूर पराना छोड़ जाए तिसका श्राम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेपो तारै तोय गर्द प्रीत भस्म संग होए अंध कूप में पत बिकराल नानक काल लियो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात भार पेख अंतर मल माया छाप सुनाहे काश करे छुपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापा लोभ स्वान अंतर अगन बाहर तन स्वा गल पाथर कैसे तरह था जाका अंतर बसा प्रभ आप नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गह लियो ओढ़ निभावे कहां बुझार तबूजा डोरा निस कही है तो समझा पूरा कहां विष्णु पद गावे गोंग जतन करे तो पी सोर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहां उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाई सुहावे न चीत जो बैराई ता सो प्रीत बलुआ के गृह पीतर वसै अंध केल माया रंग रसै दृढ़ कर माना मना प्रतीत काल न आवा मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मो झूठ बिकार महा लोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम बैर दास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख नेरे कोई न जाना तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरा

अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, और उसका विश्वास न होवे। जिसकी वास्तु तिसे आगा राखा, प्रभु की आज्ञा मन माता, उससे चौगुण करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल। अनक पात माया के हेत, सर पर हो जान अनेत, बिरख की छाया सो रंग लावे, ओ बिनस मन पछतावे। जो दिशा सो चालन हार, लौट रहे उत अंधार, बटाऊ सो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सवाया, मिथ्या होम ममता माया, मिथ्या राज उपन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती असो वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रोह मोह मान, मिथ्या आपसु प्रकृत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जब जब जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरा, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रियारु पाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण परबकार को तावे, मिथ्या मान पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पये, सफल दे नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कहो त सूचा, बिरथा नाम बिना तान अंध, मुख आवत ताक दुर्गंध, बिन सिमरन दिन नैन बृथा बिहाय, मेघ बिना ज्यो खेती जाय, गोविंद भजन बिन बृथे सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ दाम, धन धन तेजन जे कट बस्यो हार नाओ, नानक ताक बल बल जाओ। रहत अवर काश अवर कमावत, मन ही प्रीत मुखों गंड लावत, जान हार प्रभु प्रवीण, बाहर भेख न काहू पीन, अवर उपदेशा आप न कराय, आवत जावत जन्म मरा। जिसका यंत्र वसै निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम पाने तिन प्राव जाता, नानक उनजन चरण प्राता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाना, अपना किया आपे मन, आपे आप करत नवेरा, किसा दूर जनावत किसा बजावत नेरा, उपाव स्यान सगल ते रायत, सब का जाना आत्म की रायत, जिस भाव है तिस ले लड़ लाए, थान तनंतर समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जाप नानक हरी। सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, फिर साय हमेवा, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माए, जे प्रसाद सुगंधित तन लावे, तिसको सिमृत परम गत पावे, जे प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याए सदा मन अंदर, जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरु तिस रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याया त्यावन जोग, जे प्रसाद पाठ नंबर हंडावे, तिसे त्याग कथ अवर लुभावे, जे प्रसाद सुख से सोई जाय, मन आठ पैर ताका जास का बीजै, जे प्रसाद तो सब को माना, मुखता को जस रसन बखाना, जे प्रसाद तुरु रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जापत दरगा मान पावे, नानक पथ सेती कर जावे, जे प्रसाद अरोह कंचन देही, लिव लाभ तिस राम स्नेही, जे प्रसाद त्रौला रहत, मान सुख पावे हर हर जस कैत, जे प्रसाद त्रे सगल छेदर ठाके, मन शरणी पर ठाकुर प्रभु ताके, जे प्रसाद तुझको न पहुंचे, मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊचे, जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे, जे प्रसाद आपूकुन पैरी जाय, मन ते सिमरत क्यों आलस की जाय, जे प्रसाद असुहस्त सवारी, मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी, जे प्रसाद बाख मिलक तना, राख प्रोय प्रभु अपने मना, जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठत सत सत्याही, तिसे त्याय जो एक लख है, इहां उहां नानक तेरी रख है, जे प्रसाद करें पुन बहुदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान, जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभु को सा सा चितारी, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप,
जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पात्र है गुर प्रसाद नानक जास कह जे प्रसाद सुने करनाद जे प्रसाद पेखे बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे मसना जे प्रसाद हस्त कर चल जे प्रसाद संपूर्ण फल जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल नाम नु बसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तां सवराच जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जाप सोए आप जपाए जपा सुनाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसा मन सोहे प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व निधान प्रभु तेरी मया आपू कछु न किन्हु लया जे जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इनकह कछु न हाथ।

0: साजना की अचर्ज कथा अष्टपदी साध का संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध का संग मिटैब मान साध का संग प्रकट सुज्ञान साध का संग बुझा प्राभ नेरा साध संग सब होत नवेरा साध का संग पाए नाम रतन साध का संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरना कौन पुरानी नानक साध की शोभा प्रभ माए सुमानी साध का संग अगोचर मिला साध का संग सदा प्रफुल है साध का संग आवाम बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हो सब की रेन साध का संग मनोहर बहन साध का संग न कथुता वै साध संग अस्तित्व मन पावे साध का संग माते पेना साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु का संग महापुनीत साध संग के सुनी बैर साध का संग न बींगा पैर साध का संग नाई को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध का संग नाई हो ताप साध का संग तजा सब आप आपे जाना साध बुढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध का संग न कबू तावे साध का संग सदा सुख पावे साध संग बात गोचरला साधु का संग हजार सा साध का संग बसा थान ऊंचा साधु का संग महल पहुंचा साध का संग दृढ़ सब धर्म साध का संग केवल पार ब्रह्म साध का संग पाए नाम निदान नानक साधु का कुर्बान साध का संग सब कोल उधारा साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारा साधु का संग सो धन पावे जिस तन ते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध का संग शोभा सुर देवा साधु का संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध का संग सर्वधान गामो नानक साध का संग सफल जनम साध का संग नहीं कछ काल दर्शन भेट होत निहाल साध का संग कलूखत हरे साध का संग नरक पर हरे साध का संग इहां उहां सोहेला साध संग बिशरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध का संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध हृदय वसै नानक उदरा साध सुन रस साध का संग सुनो हर नाम साध संग हर के गुण गाओ साध का संग न मनते बिसरा साध संग सर पर निस्तरा साध का संग लगा प्रभ मीठा साधु का संग काट काट डीठा साध संग पय आज्ञाकारी साध संग गात पई हमारी साध का संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेदना जाना जेता सुने तेता बखियाना साध की उपमा त्यो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नहीं अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उचती उची साध की शोभा मूचती मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख एक सुबिन कोए नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौ सोख ब्रह्म ज्ञानी का दृढ़ समान जैसे राज रंग को लागा तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी का तीरज एक जौ बसता को खोदा को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ नानक ज्यों पावक का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागा जला ब्रह्म ज्ञानी का मन हो प्रगास जैसे धारी ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी का नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उच्चे ऊंचा माने अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगर की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा सामदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जोगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी का हो सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगर उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगर संसार ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग ब्रह्म ज्ञानी का बस प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी का कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख साई निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी का हो अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाय ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माय ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाना भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अदाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाना ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवा नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब उपरहात ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तन ही सलोक उर तारा जो यंत्र नाम सर्व में पेखा भगवान ठाकुर नमस्कार नानको परस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पारत्रया रूप न पेखा नेत्र साध की टैल संत संग हेत करना सुना काऊ की निंदा सब ते जाना उसको मंदा गुर प्रसाद बिख्या पर हर मन की बाशना मन ते टर इंद्री जित पंच दुख ते रहत नान कोट मदे को ऐसा परस वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन विष्ण की माया ते होए भिन्न कर्म करत हो वै ने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचा केवल भगत कीर्तन संग राचा मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अमरा नाम ज पावा नानको वैष्णो परमगत पावा भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागा दुष्ट का संग मन ते बिरसा सगला भरम कर पूजा सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल कर नित नीत मंत्र अर्पै विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय वसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित का उपदेश जग जीवै हर की कथा हिरदा वसावै सो पंडित फिर जो न आवै भेद प्राण सिमृत पूजा मूल सुख मैं जाना स्थूल चौवरणा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरणा में जप को नाम जो जो जपै तिसकी गात होए साध संग पावै जन कोय कर कृपा अंतर उतार पश प्रेत मुग्ध पाथर को तार सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप पंगल गुणगाम काहू जोगत कित न पाई है धर्म नानक दिस मिलाए जिस लिखिया तोर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया ताद संतन भाई तन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगाह प्रवान अपने दास को अप कृपा करे तिस दास को सब सो जी पर सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावा जीवन मुक्त सो कहावा तैसा हरख तैसा सोग सदा आनंद तै नहीं बियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जोत नानको पुरख कही है जीवन मुक्त पार मम के सगले ठाओ जिस जित घर रख है तैसा तिरनाओ आपे करण करावन जोग प्रभावै सोई फुन होग पसरो आप होए अनंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पए निहाल सलोक
1: उस्तत करे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭ੍ਰਮੈ ਉਦਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸਰ ਹੋਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਧਾਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਬ ਕਾਵਿ ਵਿਚਾਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਏ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨੇਕੋਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ ਪਰਮਾਏ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਪਰ ਸਰਪ ਉਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਿਰ ਸੂਰ ਨਖਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਰ ਸਿਰ ਛਿਤ ਛਤਰ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸਤਾਮਸ ਸਾਤਕ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਅਰ ਸਾਸਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਖੈ ਕਿੰਨਰ ਪਸਾਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭ ਹੂ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋ ਨੀ ਫਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲੈ ਥਕ ਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ, ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤੈ

कई बार परे परसरे उपासार, सदा सदा एक एकंकार, कई कोट किए बापांत, प्रते हुए प्रभ माहे समात, ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म परगास, कई कोट तत के बेते सदा निहार है केको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे अमर पय सद सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सहज समावे, अपने जन को सास सास मारे, नानक होए परमेश्वर के प्यारे सलोक, करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय, नानक तिस बलहार नै जल थल महियल सोय, अष्टपदी करण करावन करनै जोग, जो तिस पावै सोई होग, खिन मैं थाप उथापन हारा, अंत नहीं किछ पारा बारा, हुक्मै तार अदर रहावै, हुक्मै उपजै हुक्म समावै, हुक्मै ऊच नीच बहार, हुक्मै अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी बड़े आई, नानक सब मैं रहया समाई, प्रभावै मनुख गत पावै, प्रभावै ता पाथर तरावै, प्रभावै बिन सास ते राखै, प्रभावै ता हर गुण पाखै, प्रभावै ता पतित उधारै, आप करै आपन बिचारै, दोहा सिरिया का आप स्वामी, खेलै बिगसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर ना आवै, कहो मनुख ते क्या होए आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इसके हाथ होए ता सब किछ ले, जो ज्योतिष पावै सोई करे, अनजानत बिख्या मैं रचै, जे जानत आपने आप बचै, परमै पूला दै दिस तावै, निमख माए चार कुंट फिर आवै, चार कर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जा का दृष्ट कछु न आवै, दिस तत्काल दह दिस प्रगटावै, जा को अपनी करै बख्शीस, ता का लेखा न गनै जगदीस, जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास, अपनी बनते आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ, आज्ञा करी बपरा जियो, जो तिस पावै सोई फुनथियो, कभू ऊच नीच मैं बसै, कभू सोग हरख रंग हसै, कभू निंद चिंद व्यवहार, कभू ऊब आकाश प्याल, कभू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार, कबहू निरत करै बापांत, कबहू होए रह दिन रात, कबहू महाक्रोध बिकराल, कबहू सर्ब की हो तरवाल, कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू पेकारी नीच कार साजा, कबहू अपकीरत मैं आवै, कबहू पूला कबहू पला पला कहावै, ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै, गुरप्रसाद नानक सच कहै, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन तारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक प्रकार अनक जोन परमै परमिया, नाना रूप ज्यों सुहागी दिखावै, ज्यों प्रभ पावै तवै नचावै, जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोय, कभू साध संगत एव पावै, उस स्थान ते बाहर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं बिनास, मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म के संग, ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान, सलोक सुखी

अष्टपदी मनुख की टेक पृथ्वी सब जान देवन कौ एक भगवान जिसके दिया रह काए बौर न तृष्णा लागे आए मारे राखे एको आप मनुख कै किछ नाही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघ न लागे कोए उस्तत मन मैं कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग साध संग बिन सह सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर करम सवरन हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़ भागी ते जन जग माए सदा सदा हर के गुण गाए राम नाम जो करे विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने इत उत की ओ सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत अंधन कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त मैं सोई निर्वाण एक

जब इन किछ कर्म ने पेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बुझया तब ते इसनो सब किछ सूझया तब ते इसनो सब किछ सूझया।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदर में दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस घर की घर मानस जन्म अमोल है तो इस घर की

कानड़ा कानड़ा महला पंजवा अहं तोरो मुख जोरो गुर गुर करत मन लोरो प्रिय प्रीत प्यारो मोरो रहाओ।

समर्थ गुरु सिर हाथ तरियो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख तिरन अघन हरियो निस्बासर एक समा

माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीर्त वंत सदा सुख संपत रिद अर सिद्ध ना छोड़े साथ दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो एओ तथ ताहे कहा परवाह काहू की जाके बसीस धरियो।

संतन के पाछे मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया मन आनंद पाया प्रभ आवत सुनिया। धन गुरु अर्जुन देव।

तेरी भगत ना सोजू भावे लोग हसे, तेरी भगत ना सोजू भावे लोग हसे, सात नाम मेरा हीरा बसे, सात नाम मेरा हीरा।

कारीगर कारीगरा कारखाने विच जाए मिलंदे अपने अपने वर्ण विच चार वर्ण कुल धर्म तरन दे अपने अपने साहिब चाकर जाए जुहार जुड़न दे अपने अपने खेत विच बियो सदा किरसान विजन दे साध संगत गुरसिख पूजन दे साध संगत गुरसिख पूजन दे अमली रचन अमलियां।

बिन भागा सतसंग ना लब्बै, बिन संगत मैल भरी जै जियो, वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटा खावै। बिन भागा सतसंग ना लब्बै, बिन संगत मैल भरी जै जियो, बिन संगती सब ऐसे रहें,

दर्शन भेट तहत आनंदा, दुख गया हर गाये, हर रस पीवो भाई, हर रस पीवो भाई, नाम जपो नाम।

करो प्रतिपाला, मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विगसै जियो, मैं बिन गुर देखे नींद न आवै, मैं बिन गुर देखे नींद न आवै, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगावै, मैं बिन गुर देखे नींद न आवै, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगावै, हर हर दया करो गुर मेलो, हर हर दया करो गुर मेलो, जन नानक गुर मिल रहसै जियो, हर हर दया करो गुर मेलो, हर हर दया करो गुर मेलो, जन नानक गुर मिल रहसै जियो। सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ, मैं सत गुर

कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्जयो, तह अमृत नाम चुआया था। तोट नाही मन तृष्णा बूती, अखोट भंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे,